0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो, पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहलां मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदरे पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे वार वरगे बचन सन वरसम, ए वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग पर हारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते सेला ते सांग, सोटी दा फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई दा फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल दा फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगदी है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچھا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کے جی میں

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सत्र को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए हो राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है। ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लह धरने?
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने?
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किम?
0: ये बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है, ये हजार बंदा किवें कर सकता है? मैं तो ये पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरतें वरतारा जग जथा?
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर तीकह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ये तो साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह की हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इत्थों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाएगो दो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल। उस सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा, जंग जितेगा, अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल?
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार?
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, खाल ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ

0: और ब्याद सन सजरी टारै।
1: होर सारिया चीजा जेड़िया ने उन्हों का त्याग करे। ब्याद दे जिवें बीमारी आदि व्याधि उपाधि तो डरदे आपां कोई हो ना जावे। इस तरह महाराज कहिंदे ने जिहड़ा है ना जिवें लोग आम तौर ते आप अपने धर्म नूं धारण करदे ने, वेद शास्त्र सिमरतियां नूं धारण करदे ने, इसे तरह सिख लई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सारा कुछ ही सार तत् है, रिड़क के सब कुछ सामने रख दिता। ये सारिआं तों श्रोमणी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के शब्द पंगतियां विच जो सिद्धांत है जो उपदेश है

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, ये पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसों बरसै ऐसी सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे बरना

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं कि गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग के अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वो सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करते ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहते चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत बलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडितों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क्या है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां, प्यार सत्कार नाल दसणा नूं करिए पवित्र गद के।

0: खुशामद बचन उधर भरन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउं लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: वेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: वेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुतले।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਇਉਂ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਪੂੜੇ ਖੀਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
0: ਜੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੁਰਸ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਵੇਖ।
1: ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਟਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ, ਵੇਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਭੈੜੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
0: ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੈ ਭਾਗ।
1: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੁਕਰਮ ਇੰਨੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।

करके बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने उह संसार नूं ज्ञान दियां, ताहीं एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

0: कोई बंदा बेचारा अवगत फिरदा सी किते तो कहंदे मेरे कोल आ गया थे रात नूं उहदी रूह आ गई। कहंदा बाबा जी मैं कई थाई भटकिया मेरा कोई भला नहीं करदा जे तुसीं मेरा भला कर दिओ। कहंदे मैनूं तरस आ गया भी चल बेचारा भटकदा फिरदा। बाबा जी कहंदे मैं ना जपजी साहब का पाठ शुरू कर लिया। कहंदे मैं उहनूं एक गल कहती भी जद तक मैं पढ़ूंगा तैनूं सुनना पैणा। वो खड़ गया कहने मैं अद्धा घंटा लाया फिर ऐन प्यार नाल टेक के पाठ किया। कहने जद मैं अखीर ते जाके पढ़िया जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। कहने एकदम प्रकाश हो गया कमरे च दुध रंगा चिट्टा अते वो बंदा कहना बाबा जी मैं सचखंड नूं जा रहा हूं। देखो कहने जपजी साहब दी भाई कहने एकाग्रता दी गल है सारी। इस करके महाराज कहने है तो बड़ा कुछ पर कलयुग के लोग हुण समझदार नहीं है। तो फिर कहने देखो किन्नियां चीजां श्रेष्ठ सुभाव दे विच गुणां नूं संचन विच ग्रहण करन विच दुखां नूं दूर करन विच प्रसन्न करन विच मन नूं रोकण दे विच ते युद्ध विच जाण लई अते शुभ गुण ग्रहण करन विच वसीकार करन विच धर्म नीति विच राजनीति विच ते दान विच गुणा ते खजाने भाव गुणा दे जिहड़े इकट्ठे करन विच धन दौलत विच इतनियां सारियां चीजां कित्थे ने जपजी साहब दे विच है। बड़ा कुछ जपजी साहब दे विच रखिया महाराज ने इन्ना कुछ तां कल्ले मूल मंत्र विच ही रखिया होया। जे कोई बंदा गुरां दे वचन मान लवे ना अपने दिमाग दे खाने नूं बंद करके अगे ये नहीं कहना लाने पाठ लै कहते ने जे तुसी ये गल्लां करनियां ने फिर कामयाबी नहीं मिलनी। और जिमें जिमें सतगुरु बचन कहणगे कि इन्ने इन्ने पाठ करो भाई उन्ने पाठां दे विच फिर सारा कुछ मिलेगा जे बंदे दी रहत बहत ठीक होवेगी।
1: सुन कै संगत बोर सुनायो सुपने मैं सलूक सिख आयो।
0: सुन के संगत नूं फिर सुनाया कि सुपने दे विच देखो भाई गुरां ने सिख नूं सलोक सुनाया जिहा जिहा बंदा हुंदा पंडित सी विद्वान सी गुरां ने इहनूं सहज कृति जे आपां कहीए गुरां ने इहनूं संस्कृत सुनाता। संस्कृति गुरां नूं की औखी है वैसे भी तां महाराज ने उचारे ही है। इस करके सहज कृति उचारण कीती पहले पातशाह ने संस्कृति उच्चारण की पंजवें पातशाह ने कतंच माता कतंच पिता कतंच बंता विनोद सुत है उन्होंने कोई औखा नहीं। महाराज जो मर्जी बोल देन जिहड़ी मर्जी भाषा बोल लैन क्योंकि वह भाषा बनाउण वाले आप ने। इस करके सतगुरु जी ने कहा देखो भाई साध संगत ए सिख ने शरदा की है ते गुरु नानक देव जी ने इन बख्शिश की है।
1: कै श्री मुक्ते आप सुनाओ
0: कहने यहाँ जो भाव अर्थ है बरीकी च समझाओ जां श्रोमणी मुख विचों आप सुनाओ जी।
1: सुन कलगी तर उचरे उन्नीको जानो परम मंत्र जप जी को।
0: महाराज ने अपने मुखार बिंचों संगत नु सुनाया कहने जेड़ा जानो जेड़ा जपजी साहब है ना परम मंत्र है ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ 25 ਪਾੜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ

0: मंत्र जंत्र कलमाए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत जो

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो ये भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

था तो कितना पता लगा, गुरु अर्जुन देव साहब ने कारण निर्णो दीप्ता, कारण निर्णा करके गुरु ग्रंथ साहब कहते ने देखा है कि वाहिगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया से मिठा नहीं, जिन्हां दे अंदर रस वग पिया, जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया। मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन आ मेरे कान विच, इन्हां कहा 2-4 मिनट होर ले, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, जे तुसीं अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी, दुध पींदी, जूस पींदी, तरह तरह के खाने खांदी आ, ओनू रचना नूं खातम होके कहा ए रचना, पहलो ए कहो हां ए रचना, गल करो इहदे नाल ए तू अनरस राज रही, जिहड़ा रस तैनूं गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री ओनू कहिंदे हर रस, हर नाम हर रस भोगो, हर नाम हर रस भोगो। ए रसना तू ओ वाहिगुरु की गल छड के चुगलियां बड़ियां कर दी, क्यों नहीं करदे आ आदो सतनाम श्री बोलो ना, संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच तां बोलो, चुगलियां कर देना आपां करदे आ। एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुनदे हो भी चुगल ते निंदक की मौत कितना हुंदी, चुगल ते निंदा करने वाला पहलो, जे हुण तुहानूं इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी। बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा, रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा, कोई पानी नहीं पिउंदा, ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा, सब गंद ओहदा मंजे दे उत्ते पैंदा। करने वाला पहलो जे हुण तुहानूं इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी। बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा, रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा, कोई पानी नहीं पिउंदा, ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा, सब गंद ओहदा मंजे दे उत्ते पैंदा। बाणी दे विच लिखिया चुगल निंदक भुखे रुल मुए, चुगल निंदक भुखे ना हाथ ना कथाऊं पाए, हाथ ही नहीं कितने पिया चुगली करने वाले का ते निंदिया करने वाले। ए रसना नूं मुखातिब होए बाबा अमरदास जी कहिंदे ए रसना तू अनरस राज रही, जिन्ना चिर मर्जी गल्लां कर ला, जिन्ने मर्जी लैक्चर जान ला, जिन्नियां मर्जी कहानियां जान ला, जिन्ने मर्जी रस पी ला, जिन्ने मर्जी फ्रूट खा ला, प्यास ना जाए होरत किते, जिचर हर रस पले ना पाए, तेरी प्यास नहीं बुझनी जिन्ना चिर नहीं।

महाराज मैं की करा कहते हर रस पाए पले पीए हर रस बोड़ किसना लागे आए ते अगे जाके कहे नानक होर अनरस सब बिसरे। धन गुरु अमरदास पातशाह कहते ने दुनिया के सारे रस्ते मेरी जीवे भुल जाएंगे जा हर वसे मन आए जिदन नाम रब का बंदगी तेरे हिरदे च आ गई सच जाने हो। मेरा साहब कृपा करे अज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा शराब का नाम आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सारे गुरमुख रूमा बैठे हो मगर बाबे अतर सिंह का वचन सी एक आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बाबा अतर सिंह जी का वचन आया। बाबे अतर सिंह पिंड के लोग एक दिन देसी शराब बनाते कि अन्न रस्ते बोलते हैं एक वचन लिखे उन्होंने वो कहते मैं तुड़िया जावा खेतां चो दी मेनू पिंड के लोग वेख के कहते बाबा तेरे नेत्रा च रौनक बड़ी है ध्यान दियो बाबे अतर सिंह साहब संत ताई का नाम उच्चा किया बाबे अतर सिंह ने संत ताई का नाम उच्चा किया है बाबे अतर सिंह साहब एको ही झग्गा एको ही परना एको ही कटाम ओदिया ही रहनिया मुंदरिया नहीं सी उहदे हत्थ च उहदे गले च कंडे झगे नहीं सी ओहदे कोल कोई वड्डियां गड्डियां नहीं सी मगर उहने आप जपिया ते होरनां नूं जपाया शराब कड़ते बाबा अखां बड़ियां भरियां ते कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह साहिब दा अमृत इन अखां प्यार भरन च होणा खाली कितना इन्हां अखां च पंज चुले पए ने ते पिंड दे लोग सीधे साधे अनपढ़ सी कहण लगे बाबा अज नहीं असीं बणाउण डए आ ये पी के वेखिये कदी ध्यान देना है इतना किताब च लिखिया अगर सतनाम श्री वाहिगुरु ते बाबा अतर सिंह साहब कहने लगे पीती तो नहीं कदी पीएगा ते बाबा जी कहते पी लागे ध्यान दो कलेजा कुमना भी पी ली अगर सतनाम श्री बाबा जी कहते पी लागे ध्यान देना जरा कागरता बख्शे उन्हें कोले च पग दे दी बाबा जी तड़के ठंडी करते रहे ठंडी करते रहे ठंडी करते रहे उन्होंने दो बार आवाज दी बाबा ठंडी होगी पी बाबा ठंडी होगी पीला बाबा जी कहते ठंडी नहीं होगी सेहत ने लुटाई नहीं जो बिल्कुल ठंडी होगी बाबा जी हम तो बिल्कुल ठंडी होगी पी लो तो बाबा जी ने कबला चुक के लागे कुत्ता कट लिया अगे रखा ध्यान दे कुत्ते मेरे इतना किया कुत्ता आया भजा शायद महापुरुषा ने कोई दुध दही मेरे अगे रखा जो कुत्ता आया तो बादशाह ऐ किया तो दौड़ गया ध्यान दे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम जो कुत्ता दौड़ गया तो बाबा अतर सिंह जी पता की कहने ध्यान दे आखो वाहिगुरु बाबा जी कहते जी मेनु चीज दिखी है तो कुत्ता भी नहीं पींदा कुत्ता जी ने सब तो माड़ा लिया गया कुत्ता एक शब्द नफरत किरणा का दायक है बाबा जी कहते मैनू गुरु के सिख नू पीण नू दित्ती इहनू ते इक कुत्ता मूंह नहीं लाउंदा गुरु का सिख जितना लाया जितना हरि का रस आ जांदा है ना उदों सारे रस भुल जांदे कहे नानक होर अन्न रस भुल ही जांदे जां हर वसे मन आए जितन मन विच परमेश्वर की बंदगी आ वसदी है मेरी हाथ जोड़ के बेनती है मैं सब तो पहले आंदा तुम पुछा सी नेतनेम किन्ने जाने करते किन्ने बजे उठते मैं इतना का प्रचारक नहीं अखा मीट के ए मेरा कोई संबंध नहीं है तुहाडी आ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुसी बुजुर्ग तुहाडे विच बैठे तो मैनू इतना भी महसूस हो गया भी नाम जपण वाले भी बैठे गए आखो सतनाम श्री एक बेनती करा पिछे जदों अज तो 10-20 साल पहलो 50 साल पहलो कोई साधु महात्मा तो उठ के ना किसी नूं कहिंदे सी आ दवाई लै जा ते वरताया कर लोकां नूं सुणोगे जे ध्यान दिओ कहता दवाई लै जा लोकां नूं वरताया कर ते ओह सवाह दीआं कुड़ियां होण जां कोई चीज होवे ते ओह इक शर्त रख दिंदा सी जिहड़ा दवाई देण वाला शर्त रख दिंदा सी पुत्तर इह लोकां नूं दवाई देई मगर इहदा मुल ना मटी जिहनूं जिहनूं देंदा ओह राजी हुंदा जाए दवाई एह होगी कुड़िया हो हाथ भी मेरे हो गए मगर जिदन तो इन्होंने कुड़िया का मुल वट लिया इन्हें काम नहीं हो करना यह गुरबाणी बेचने वाली चीज नहीं गई यह सर्व के कल्याण लिए जिन्ना मैं तुम कह मैं अपने आप नी सुना
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1:45 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡੇ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜੁੜ ਵੇਖੀਏ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਜਪ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: सतगुरु कहिंदे कर हर ट माला टिंड परोलो। ध्यान दिओ जी, जग दीआं रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरू वाहिगुरू गल करो
1: वाहिगुरू।
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल, ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा। उहनूं टिंडा कहिंदे। कर हर ट इक खूह बणा। आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के, माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन? एकाग्रता बख्शे। इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन? कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता। इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग? हां कौन किनू जो? मन जोड़ो। जो का मतलब जोड़ दो, जो दो। आप कहने बलद जोड़ दिते। इस खूह दिया माला टिंडा खिंचन लई मन बलद बनाओ। तो मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़ता रहिंदा है। साहब कहिंदे ने तू मन जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिंच, ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो, अमृत सिंचो, अमृत
1: सिंचो
0: ते भरो क्यारे। बोलो ना, अमृत सिंचो भरो क्यारे। क्यारे क्यारे जेड़े खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मत्तां पा के खेत दे विच की पा दी दे। खेती बाड़ी करते तुहानूं पता, पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे। साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया, महाराज शरीर ते कहड़े क्यारे ने? आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम। ते खेतां विच ते क्यारे हुंदे, इत्थे क्यारे कहड़े? कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां। अंदरों आनंद के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा है। फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये? महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी। गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलदा। नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी। नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा। साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इह सवासां दी माला बना, मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं, थल्ल्यों अमृत आउणा नहीं। ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ। मन नूं विच जोड़ना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे। ते अगे लिखिया तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

जाने नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आं, उस तरह श्राध करवाउने आं, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

बोलै मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। बड़ा निम्रता दा शब्द जे कोट पराधी तरियारे। मैं मूरख की केतक बात है